आदरणीय तरंगा मगे जीवित हम तात्पर्य में लसन होने ओया निसाई ओया तमें मगे जीवित लसन में मात किया नुमनो दान ना मावित रक दान ए बंदी में नमक अदत मन दान ना इते मात का से जीवत न मंग हरिया साई अगुत समासे तो हुलंग हम ओए हम दाम था दता गुड़ाग मामरु पेम कले इमी नती माला था अत्तट मादरे करपु मिनिसु थानी होना दुखता आदरे हमें उन्हें मिनिसु बायम मातक इन रायट कैंडी वलीन आंचू हमें किया ना मंगासई ऐवा आय केवन अगस्त मासे ट हुलंग हमु हम दाम थादता बड़ाग मामरु पेम कले हिमी नती माला अत्तट मादरे करपु मिनिसु थानी होना दुखता आदर आई मिवनु मिनिसु बायम मतक इन रायट आदर आई मिवनु मिनिसु बायम मतक इन रायट